होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई,

0: Come on. Come on. Come on.
1: झोपड़ियों में ढोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई,

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं सितारों को झुका सकते हैं आप।